एहसान करोगे। अरे साहिबान, मौला करम करेगा तेरी सुबह शाम पे, जो कुछ भी है लुटा दे मोहब्बत के नाम पे। अरे लुटा दे।